नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगणं अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पणं। तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावै। सोई रामदास गुरबलन बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो।

खेल गूढ़ो पियो हर राय, संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो। आज उन्नी संभव आओ सो जस कल कवि अण बखाणे आओ, गुरु नानक अंगद वरे आओ गुर अंगद अमर निधान, गुरु रामदास अर्जन वरे आओ पारस परस प्रमाण। सद जीवन अर्जन अमोल आज उन्नी संपो, पै पंजन पर दुख निवार आपारिया नम पो। अगै गहन परंपात दहन शीतल सुखदाताओ, असंपो उदव्यो पुरख पूर्ण विधाताओ। नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो, तन तन गुरु रामदास तन तन गुरु रामदास, गुर जिन पारस परस में लायो। जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग, जुगत सिव रहता गुरपूरा पायो, वडभागी लिव लागी मेदन पर सहिता। पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस भगता, कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता। त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारण, शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण। महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ ना हुटै, सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नानक हुटै। गुर रामदास तन सर्ब मैं सहज जंदो वाताण्यो, गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जाण्यो। पै निरपौ माण्यो लाख मैं लख लखायो, अगमा गोचर गत गंभीर सतगुर परचायो। गुर परचै प्रमाण राज मैं जो कमायो, तन तन गुर तन अपार सर सुबर परायो। गुर परचै प्रमाण राज मैं जो कमायो, तन तन गुर तन अपार सर सुबर परायो। गुर गम प्रमाण अजर जरयो सर संतोख समायो, गुर अर्जन कल उचरै तै सह जोग निज पायो। अम्यो रसना बदन बरदात अलख अपार, गुरसूर शब्द हम मैं निवारयो। पंचा हरण दलयो सुन सहज निज कर सहारयो, हर नाम लाग जग उदरयो सतगुर हृदय बसायो। गुर अर्जन कल उचरै तै जन कै कलश दीपायो सोरठे। गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चालै नहीं, नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो। पव जल सायर सेत नाम हरि का बोए था, तो सतगुर संहेत नाम लग जग उदरयो। जगत उदारण नाम सतगुर तुठै पायो, अब नाहे अवरसर काम बारंतर पूरी पड़ी। ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत शत्र गुर राम मैं दियो। गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैन, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन। सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो और, आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तोर। प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो, पारस परस परस परस गुरु गुरु कहायो। पन मथरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो, कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो। तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत, बासर रैन बास जा कोहित नाम स्यों।
परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगे आओ बासना ते बाहर पै देखिया तताम स्यों अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लागो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्ब मैं अर्जन गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यों अंत ना पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव योग करी फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाडो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारण कौ गुरजोत अर्जन महे तरी जग औरन यहे महात्म मैं अवतार उजागर आन की आओ तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूकै रे मन भेद बपेद ना जान बियो परतच हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पाग लिलार उदय तब लो प्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो काल समुद्र पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जाने आओ पयो तह समसर सोई तरण गगन नवखंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पार पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन पर तख हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचियै वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढोलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कमन कह श्री गुरमोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो रैस पियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नर होके गुर रामदास जिन पायो शत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन कौ दे आयो एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससर सुइया किव करी निवणना जाए थणी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थणी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता कीचै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा कू जयकार
ਜਿਤ ਦੋਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨ ਲਹੁ ਮੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਸੱਜਣਾ ਐਸਾ ਹੱਸਣ ਸਾਰ ਤਿਸ ਸੋ ਨਿਹੁ ਨਾ ਕੀਚਈ ਜੇ ਦਿਸੈ ਚਲਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਏਵ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁਛ ਤੜਨ ਕਲ ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਣ ਵਿਆਏ ਨੀ ਕੱਪਰੀ ਝੜ ਚੱਕੜ ਉਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਹੇ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆਂ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਸਾਲ ਕੋ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਕੋਈ ਪਾਈ ਬੰਦੀ ਹੈ ਚੁਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਣ ਸਿਰ ਖੋਹੇ ਨਾ ਲੈਣ

सहसै जियरा पर रहो मां को अवर ना टंग नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मारी है जे सतगुर दिखिया होए आप पछाण हर मिलै बहुन नम्र ना होए कीचड़ाथ ना बुढ़ई एका नजर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अगन मरै जल लोड़ लहो विण गुर ने जल नाहे जन मरै परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चलै सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेलै मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल लाए मन तन मैला अवगुणी चिंज परी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साग स्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुरथ तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत ना पाओ पैंदा खांदा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ नानक नाम सलाहे तू हो रहा मैं आवो जाओ हैन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तोर मरै जीवन नाही तान छोटा सेती जो मरै लगी सा प्रवान जिसन लाए तिस लगै लगी ता प्रवान पिरम पै कामना निकलै लाया तिन सुजान भांडा तो वै कौन जे कच्चा साजिया धातु पंजर लाए कूड़ा पाजिया भांडा आण ग्रास जात पावसी परम ज्योत जागाए वाजा वापसी मनो जे अंधे कूप कहया बिरदना जाननी मन अंधै ऊंधै कवल दिसन खरे करूप एक कह जान कहया बुझन ते नरसुर स्वरूप एक ना नाद ना बेद ना गी रस रस कस ना जान अंत एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना यकर सार अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खार जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संजम कमावै कर्म सील संतोष का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर खेत पछाणै बीजै दान सो खत्री दरगै प्रमाण लभ लोभ जे कूड़ कमावै अपना कीता आपे पावै तन नाथ पाए तनूर ज्यो बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री सवाल सबनी कटी सौ वसै सहबन कटना कोए नानक ते सुहागणी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ एत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै कान ना कीजै नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मरना जापै मूलिया आवै कितै थाए ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंधवरतावा पाओ दूजा गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कलै उठी चलै साध नाही अवे ही गलै राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधकार बंत की सेना सेवी है मंत्र जो ज्यापार सीता लै गया दहसरो लक्ष्मण मुओ सराप नानक करता करन हार कर वेखै थापो थाप मन मैं चूरै रामचंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर यारा दया आया कर संजोग भूला दैत ना समझई तिन प्रभ किए काम नानक वे प्रवाह सो किरत न मिटई राम लाहौर सहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा लाहौर सहर अमृतसर सिफती दा घर महला पहला उदो साहे क्या निशानी तोटना आवै अन्नी उदो सी करे ही उठी कुड़ी रनी तम्मी सती रनी करे सियापा रोवन कूड़ी कमी जो लेवै सो देवै नाही खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कै दोखड़ै सड़े ओहे काली होया देहुरी
ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਜਿੱਤ ਡਿੱਠੈ ਤਨ ਪਰਫੜੈ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਮਨ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੈ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੋਸ ਨਾ ਦੇ ਔਰਾਏ ਨੋ ਮਤ ਚੱਲੈ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਪਵਣਾ ਖਾਤੀ ਟੋਵੈ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਹੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਭਿਆਗਤ ਹੈਨਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ, ਤਿਨਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਅਪੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ ਤਾਂ ਕਾ ਭੀਖਕ ਹੋਏ, ਤਿਸਕਾ ਪੂਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਹੋਵਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਕਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਤਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋਟ ਵਧੀਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਪਾਹੇ ਤੇ ਜਾਹੇ ਵੀ ਸਰ।